सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी। और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हजूर अपने ना अमृतमय वचना दे विच ये आखते हैं कि मेरे अंदर अपने जीवन नू सफल बनाने दी, अपने जीवन नू कामयाब करने दी, इस मनुखा जन्म नू अकाल पुरख वाहिगुरु दा ब्रह्म ज्ञान दा फल लगाने दी, जन्म मरण दे गेट चो निकलन दी, अकाल पुरख वाहिगुरु दी प्राप्ति दी इतनी इच्छा है, इतनी ख्वाहिश है कि अगर कोई इस मेरे जीवन नू सफल बनान वाला मिल जाए तो कहते हैं मैं अपना तन उसनू वेच देन नू तैयार हूं ता कि यह तन सफला हो जाए, एक किते वेस्ट ना चलिया जाए। अगर कोई यह गारंटी ले लै कि ओ इस तन दे अंदर वाहिगुरु की जोत नू प्रगट करके मेरा भरम अज्ञान तमाम कर्मां दा जाल तमाम बंधन दुख सुख जन्म मरण इत आदि दे विच्चों मैनू इस मैस दे विच्चों इस आवागमन दे गेट दे विच्चों निकाल सके अते मेरे इस शरीर नू सफला बना सके कि ए निष्फल नहीं गया। कहंदे हन मैं अगर कोई ऐसा कम करन वाला ऐसी मेरी मदद करन वाला मैनू मिल जाए तो मैं ये अपना तन उसनू वेच देन नू तैयार हूं। जदों असी कोई चीज किसे नू वेच दिने हां उदों ओनरशिप जो है वह ट्रांसफर हो जाती है, उस उत्ते फिर साड़ी कोई अपनी ना अथॉरिटी रहिंदी है ना ओनरशिप रहिंदी है, वह वस्तु साड़ी रहिंदी ही नहीं जो असी किसे नू वेच दईए वह उसकी हो जाती। इतनी दुर्लभ वस्तु, इतनी दुर्लभ वस्तु जो के लखां करोड़ां जन्मां दे गेट तो बाद 84 लाख दे गेट तो बाद जो प्राप्त हुंदी है इस तो ज्यादा कीमती शायद कोई नहीं। गुरु बाबा जी कहंदे हन मेरे पास यह सब तो कीमती शय है, कहंदे हन ये किते विरथी नब चली जाए, इस चांस नू मैं गवाना नहीं चाहता, कोई इसका जुम्मा ले लै, कोई इसकी रिस्पोंसिबिलिटी ले लै, कोई इसकी गारंटी ले लै, तो मैं ये अपना तन उसनू वेच देन नू तैयार हूं। जो मर्जी इस तन नाल करे, इसनू मारे, जिंदा रखे, भुखा रखे, सत्कार दे, निरादर दे, ए उसकी खुशी, पर इसनू सफला बना दे, इसनू जिथे पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंचा दे, इस दे विचों जो प्रगट होना चाहिदा है उसनू प्रगट कर दे, बस उस दे बदले दे विच मैं अपना तन दा मालक उसनू बना देन नू तैयार हां। एह तन वेची बै करी हुंदा है गहने रख देना, मैं उसके गहने रखने को तैयार हां, जे को लै विकाए अगर कोई यह सौदा मेरे ना करने तैयार हो। क्योंकि अगली लाइन च महाराज जी आखदे नानक कम ना आवे जित तन

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर नूं ही वह भोगना पै गया। भोगं त रोगं, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं। भोगं त रोगं, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहिंदे हन जे सौ वरिया मिठा खाए, कहिंदे हन

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास कर ग्रिस्तियां नू इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो हां, अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है असी ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन ये नहीं असी सुनिया, ये नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुने है कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या ऐ सुने, ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ये दसना भी मुश्किल है अते इसनूं मनना भी बड़ा मुश्किल है ते सानू शायद किसी ने दस्या भी ना होवे। गुरु बाबा जी दसदे हन कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने दे नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते को मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड। वो कहिंदे ऐसी गल नहीं, हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे हन

0: ऐ है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो,
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स दे उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वो इन्हों इंद्रिया दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वो शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया, उसनू द्वारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लैवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं, सो गृही ओ गृहस्थी है, जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इन्हां इंद्रिया दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रिया उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब कि ओ अपनिया नीड्स नू कटावे, अपनिया नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही है। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखन की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनिया इंद्रिया नू कंट्रोल करदा है, इंद्रिया दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे
1: ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

0: सतगुर के हाँ सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया
1: पूरे गुरु ने मेनू भक्ति का मार्ग दसा
0: भक्ति मार्ग भी

0: पंचम विश्व में काफी समय तो आज गुरु ने आप भी दे प्रायण क्या था सती बुलाओ
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज साहब फरमान।

0: ऐसा गुरसिख वो कदे दुख दे अंदर नहीं आउंदा, उन्हों दुख रोग संताप कोई नहीं चिंबड़दा। गरीब नवाज साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फरमान,
1: दसवंत गुरु ना देवई झूठ बोल जो खाए।
0: गुरसिख का अगला कर्म है भी दसवंत जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी।
1: दसवंत गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दें साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह

गुरु की संगत विच आउण वाली मां भैण उस नूं मां भैण दा रूप जाने, धी नूं धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नूं अज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नूं मां भैण ना जाने, धी नूं धी दा रूप ना जाने, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नूं बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नूं

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा है ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती हो।

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हू बहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

जपजी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा, जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा, गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं, ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है। बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर, बिन जप जाप जपे बिना, जो जेवै प्रसाद सो बिस्टा का किरम होए, जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ ते जाप साहब

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे वे गुरसिख नू वेख के राह ही छड़ जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नू आज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेखिया, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो, शस्त्र हमेशा पास रखे। शस्त्र ते शास्त्र, शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन एक

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां का सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी का सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली

मेरो दर्शन नाहे ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे तां सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहन दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने, पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वह भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सचे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नवाज, समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ये गरीब नवाज कहन लगे, नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ये भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता, उदों इसका प्यार गुरु

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे, रहत बिना सुख कबू ना लहे। कदे भी सुख उस नूं नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

Belli hissedilir. Guru Maharaj'ı longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, ज़रूरत, एक तड़प दर्शित करते हैं, रखते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजां के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसने पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने उसको बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता, हर जी पिता, जो सपना का पिता माता है, उसको मिलना चाहता है। और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है, दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसको कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती है। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मांगता है, होर किसी चीज के नाल वो सेटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन को। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई, उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिला। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इस दे विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद, एक पल, एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवें, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवें, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दें, अपने दीदार दे दें, अपने आप में मिला लें, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज च तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुध जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

इतना खूबसूरत जवाब देता है, कहते हैं मन अर्पयो। सुखमनी साहिब जी महाराज ने आख्या है ना, कहते हैं

गुर महल बुलाया। गुरु अपने महल च उसनु बुला लेता है और उसका निवास फिर गर्भ जूना दे विच नहीं हुंदा, निवास गुरु दे महल च हुंदा है। अते ओ गुरु दा शहजादा बन के गुरु दे नाल रहिंदा है। गुरु दे महल नू असी नहीं जानदे, असी नहीं देख सकते किस स्थान ते किस तरह दा है। कहिंदे पर गुरु उसनू अपने महल च बुला लेंदा है। जड़ा इंसान अपने आपे नू पहचान लै वह फिर गुरु दे नाल रहिंदा है, सभी आसा उस दियां पूरियां हो जांदियां हन। सभे आसा पूरियां गुर महल

0: दास जयत है।
1: शब रोज
0: गश्तम तरहवा कर देव बनी खया
1: गाहे नजर की कर करदम
0: बदबख्त हम चो बखील गाफिल बदबख्त।

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबार। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया की कृपा कर। दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर। तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्मी कमाल सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो

श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे सिख भाई नंद लाल, भाई देसा, भाई प्रहलाद आदिक सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता के चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउना टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर दे ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा है, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा है ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा होए सिख सिर टोपी धरै सात जन्म कुछ

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

जी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जे मैं प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भाई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भाई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भाई गुरसिख नू वेख के राह ही छड़ जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेखिया, इस करके ए पूरने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ए बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजा ककारा दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रा दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन एक

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है, ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है, जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है, सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे, औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई, युवती जुत सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या, विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे, किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बो भाई, ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कीयां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे, ना अभिमान करे ना।

मेरो दर्शन नाहे ते पापी त्यागे भिख। वो ते अपने आप नू सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे तां सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने ते सबना मोहरे आके बहन दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वह भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिख हां, सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सचे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नूं आज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प किया गरीब नूं आज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। यह गरीब नूं आज कहन लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा। ते जदों ए भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता उदों इसका प्यार गुरु नालों टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डाल लेगा वह गुरु का सिख नहीं होएगा, वह खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नूं अज कहिंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उस नूं नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नूं अज सच्चे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान।